सौने अमरा जयसाईराम दर रविवार सवारे 7 वाग्या थी 10 मिनिट सुधी आप गुजराती भाषा में साई वचनामृत सांभळी शकशो याद राखशो दर रविवार सवारे 7 वागे 10 मिनिट सुधी साई बाबानी अमृतमय

जय श्री साई राम। पिछले एक दो हफ्तों से हम बात कर रहे थे कठोर उपनिषद के विषय में। ये उपनिषद आप यूं कहिए कि ये मृत्यु के साथ संवाद है। अब तक की कथा ये थी कि उदालक, जिसका नाम वाश्रवस भी है या था, उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया, कुछ क्रिया करी, उपाय किए, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को नाम दिया नचिकेता। वाश्रवस विश्वजीत नामक यज्ञ करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत से साधु संतों को आमंत्रण दिया। साथ में यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को, पुरोहित को, पुजारी को, साधु संतों को दान देने हेतु उन्होंने बहुत ही गायें इकट्ठे कर रखी थी। जैसे कि आज के जमाने में हम किसी पंडित को घर में बुलाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए, हम उसको दक्षिणा में कुछ पैसे दे देते हैं। उस जमाने में गाय दी जाती थी। नचिकेता ने देखा कि मेरे पिता ने जो गाय इकट्ठी की हैं, जो गौशाला में गाय बंधी हुई हैं, जिनको वो दान देना चाहते हैं यज्ञ के उपरांत, वो गाय दूध नहीं देती, बीमार है, बूढ़ी हैं, मरीज हैं, यूं कहिए कि किसी काम की नहीं है। विचार कीजिएगा, अगर वो गाय इस ब्राह्मण को दी जाए, ब्राह्मण के लिए वो उल्टा समस्या हो जाएगी, उसको गाय की देखरेख करनी पड़ेगी, कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा। अब बेचारा ब्राह्मण गाय को मार सकता नहीं है, छोड़ सकता नहीं है। नचिकेता को लगा कि मेरे पिता यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में जो आपके सबसे प्रिय वस्तु हो, प्रिय चीज हो, वो दान देनी चाहिए, और यहां तो मेरे पिता बूढ़ी गाय देना चाहते हैं, सारे संसार में उनको उपहास होगा, हंसी उड़ेगी उनकी। नहीं, मुझे अपने पिता को इस पाप से बचाना है। तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री आप मुझे किसको देंगे? पिता कुछ नहीं बोले। दोबारा पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? पिता कुछ नहीं बोले। तीसरी बार नचिकेता ने प्रश्न किया, पिताजी यज्ञ के उपरांत आप मुझे किसको दान में देंगे? पिता ने क्रोध में आके कह दिया, मृत्यु तो

बदनामी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ये सुनना था कि वहां पर सारे ऋषि मुनि तपस्वी अवाक रह गए। यहां पर नचिकेता अपने पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला ठीक है पिताजी, मैं यमराज के पास जाता हूं। अब यहां से नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं। यमराज के पास वो कैसे पहुंचे, किस रास्ते से गए, वो अलग बात है। प्रश्न ये है, आपने शायद सुना होगा कि महाभारत में अर्जुन भी स्वर्गलोक गया था दिव्य अस्त्र की प्राप्ति के लिए। शरीर से गया था या शरीर को छोड़ के गया था, कैसे गया था अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जब अपनी विद्या अपने गुरु के पास संदीपनी नाम के गुरु थे वहां जब पूरी कर ली, उनको दक्षिणा हेतु उनका पुत्र स्वर्ग लोक से वापस ला के दिया था, ठीक है ना। तो यूं कहिए कि ये एक ऐसी क्रिया है जिससे आप यमराज के पास जा सकते हैं। नचिकेता यमराज के घर पे पहुंचा, यमराज घर पे नहीं थे। यूं कहिए कि मृत्यु देव कहीं गया हुए थे। अब जरा विचार कीजिएगा आप, नचिकेता मृत्यु के द्वार पे खड़ा होके दरवाजे को खटखटा रहा है और मृत्यु देव घर पे नहीं है। और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप संसार में दृष्टि डालें, जब भी मृत्यु घर पे आती है आप घर में मिलते हैं। मृत्यु जब भी जिसको आनी है वो बिना बताए आती है और आप मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मृत्यु बस में भी हो सकती है, गाड़ी में भी हो सकती है, सोते हुए भी हो सकती है, कई तरीकों से हो सकती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आप संयम मृत्यु के पास जाते हैं तो मृत्यु आपको नहीं मिलती। संयम मृत्यु के पास कौन जा सकता है, जिसको मृत्यु का डर ना हो, जिसने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया हो, जो मृत्यु को समझ रहा हो या समझ लिया हो। ये उपनिषद, ये जो उपनिषद है कठोपनिषद, ये हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में किस प्रकार का रिश्ता है या रिलेशनशिप है। ये बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। भगवान बाबा ने क्या बोला, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, जस्ट द कॉमा, जस्ट द पॉज। जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, आप कोई पंक्ति लिख रहे होते हैं, बीच में आप क्षण भर के लिए कॉमा लगाते हैं, विराम देते हैं छोटा सा, वो आपका सेंटेंस या आपकी पंक्ति समाप्त नहीं हुई है, कंटिन्यू हो रही है, आगे चलेगी। इसी प्रकार से जो एक आत्मा एक शरीर को छोड़ती है उसकी यात्रा यहां समाप्त नहीं हो रही है, वह केवल अपनी बस अपनी ट्रांसपोर्ट बदल रही है, शरीर को बदल रही है। जैसे आप यहां से भारतवर्ष जाते हैं, यहां से पहुंचते सिंगापुर, वहां जाके प्लेन को बदलते हैं, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से आत्मा एक जगह से यात्रा पूरी करके एक शरीर के अंदर फिर दूसरे शरीर में जाती है। यात्रा पूरी नहीं होती है यहां तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। मैं जरा लौट के जाता हूं दान की ओर। आप जरा सोचेगा जो हम आज के जमाने में जो दान करते हैं, नचिकेता ने तो वहां अपने पिता को रोका गलत दान करने से, तो क्या हम अपने घरों में ऐसा करते हैं? क्या हम अपने घर वालों को पाप से बचाना चाहते हैं? क्या हम दान की महिमा को समझते हैं? क्या ये हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए? ज्यादातर यहां देखने में आता है हम किसी पंडित को पुजारी को घर में बुलाते हैं पूजा करने के लिए, पूजा के बाद

उन्हें दान देते हैं। दान क्या देते हैं? एक कमीज दे देंगे, एक अंगोछा दे देंगे, तौलिया दे देंगे, कुछ बर्तन दे देंगे, कुछ सब्जी, कुछ दाल, कुछ चावल, आटा, चीनी और चंद पैसे दे देंगे। जरा विचार कीजिएगा, अगर एक ब्राह्मण एक हफ्ते में दो दिन पूजा करवाता है या पूरे साल में वो 100 दिन पूजा करवाता है, उसको 100 बार दक्षिणा मिलती है, वो हर आदमी उनको एक प्रकार की कमीज देता जा रहा है, शर्ट देता जा रहा है, अंगोछा देता जा रहा है, बेचारा ब्राह्मण क्या करेगा उसको? आपने अपनी ओर से तो अच्छा काम किया, एक नई कमीज लाकर दे दी, लेकिन 100 कमीजें ब्राह्मण करेगा क्या? कई कमीजें उनकी बंद पड़ी रहेंगी, पैक पड़ी रहेंगी, खोल नहीं पाएगा। उस बेचारे के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, या तो किसी को दे दे, उपहार दे दे, या बेच दे जाके, क्या करेगा वो? कहने का तात्पर्य यह है कि आप दान अवश्य दीजिए, लेकिन दान में थोड़ा सा बदलाव लाइए। आपने अगर $50 की कमीज खरीदी है, शर्ट खरीदी है, तो $50 कैश दे दीजिए, उससे काम तो आएगा, ब्राह्मण प्रसन्न तो होगा। क्योंकि हम लकीर के फकीर हैं, कहीं आपने पढ़ लिया कि भाई ब्राह्मण को अन्न दान दो, वस्त्र दान दो, द्रव्य दान दो, हमने अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, द्रव्य पैसे दे दिए। समय के अनुसार बात को समझिएगा, पहले जमाने में उदालक कृषि के जमाने में गाय दान की जाती थी, गाय की महिमा थी, गाय का प्रयोग था, गाय काम आती थी। तो आज अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में यहाँ आता है, उसको गाय दान दे दे, वो क्या करेगा? कहाँ पालेगा? आप वो नहीं करते हैं। तो समय के अनुसार देखिए कि उसको किस चीज की जरूरत है, या कौन सी वस्तु दूसरे बंदे के काम आ सकती है। जरा विचार कीजिएगा, आपको बात मानने की जरूरी नहीं है, विचार कीजिएगा, सोचिएगा, मनन कीजिएगा, अगर बात आपको ठीक लगे तो अवश्य उस पर चलिएगा। हम बात कर रहे थे नचिकेता युवराज के द्वार पे पहुंच गया, वो युवराज घर पे नहीं है। क्या हम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हैं? पहला प्रश्न यह है, क्या हम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हैं? नचिकेता प्रसन्नचित में गया है, नचिकेता क्रोध में नहीं गया है, मायूस होके नहीं गया है, घबरा के नहीं गया है, डर कर नहीं गया है। इसका मतलब यह है उसके मृत्यु से कोई डर नहीं है। लेकिन हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम मृत्यु को समझे नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड डेथ। हमें लगता है हमारी दुनिया लुट गई। जब किसी के घर परिवार में किसी का निधन होता है, बहुत दुख होता है। मैं भी गुजरा हूं इस स्थिति में से, जानता हूं, समझता हूं। लेकिन अगर हम शास्त्र को ये पढ़ के समझ लें कि ये मृत्यु हमें सिखा रही है शरीर को बदल के लक्ष्य को बढ़ना, लक्ष्य क्या है? अगर ये समझ लें कि हमारी यात्रा इस जन्म में केवल यहां तक की थी, आगे हमें अगले जन्म में आगे यात्रा पूरी करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? कदाचित हमने मृत्यु की तैयारी नहीं करी। चाहे आपकी उम्र 70 साल की हो, या 80 साल की हो, या 100 साल की हो, सहस्त्र ईयर तक आप जिले, सहस्त्र सालों तक माफ कीजिएगा जिले आप, वर्षों तक जिले, लेकिन हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। अब मृत्यु की तैयारी क्या होती है, पहले यह सोचा जाए। जब किसी की मृत्यु होती है तो प्रश्न पूछा जाता है, हाउ डिड ही डाई? ओह, ही हैड एन हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा, बेचारा मर गया।

Wow. How did he die? Accident. How did he die? Disease. How did he die? कैसे मरा? कोई कहता है बीमारी थी, लंबी बीमारी से. कोई कहता है बीमार था बहुत समय से, बीमार था, लंबी बीमारी थी.